0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसे मिना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो हेलो, नाम बताए सर।
4: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर।
3: चौधरी जी बताए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: जी मावी जी से बोल रहा हूँ।
3: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
4: गाना बढ़िया लाए हैं सर।
3: बताए सर।
4: तू झूठ बोलता है,
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरती।

0: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा के।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: मिल गया हमको
1: जी,
0: मिल गया हमको साथी, मिल गया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
5: But
6: hello,
7: naam bataye sir?
6: Sir Mohsin.
7: कहाँ से बात कर रहे हैं मोहसिन जी?
6: संजय कॉलोनी।
7: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
6: तड़प तड़प फेस दिल से आह निकलती रही।
7: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना रेडियो DS में। कुल के धन्यवाद।
6: थैंक यू।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं।
4: शहनाज।
5: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: संजय कॉलोनी।
5: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
4: परदेश मूवी का सॉन्ग है सर। नहीं होना था।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश कैसा हो?

0: हेलो,
1: नाम बताए सर।
0: अमित सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सैनी जी?
0: गंगापुर सैडी।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो पे?
0: बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोपर कम्मा में खिल देते।
1: बिल्कुल सुना रहे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं गुलशन जी?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ आपकी फरमाइश पे गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते।
1: सर जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: कैसे हो जी? बताएं कौन सा गाना सुन
1: आज तो
0: रहे
1: बस मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली आया हूँ आज मैं। चलो इधर से ही बात कर लेते हैं आपसे।
0: हो? अच्छा, दिल्ली में घूम रहे हैं, जम्मू कश्मीर से।
1: नहीं
0: अच्छा,
1: सर जी, घूमने लड़के की एडमिशन करानी है इधर कॉलेज में।
0: तो आ जाए सर। दिल्ली तो हमारे बहुत ही नजदीक पास है,
1: सर
0: चार
1: जी, लगाया
0: घंटे
1: चक्कर मैंने राजस्थान तकरीबन पूरा देखा था 96 में।
0: अच्छा
1: उधर हमारा एजुकेशन टूर आया था, तो तकरीबन हमने जितने भी है ना राजाओं के महल वगैरह सब देखे थे। वो आपका वो भी देखा, हवा महल।
0: आपका फेवरेट जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो डीएस, वो भी यहाँ से 4 घंटे
1: सर जी,
0: की
1: जरूर
0: दूरी
1: लगाएंगे चक्कर, भगवान ने चाहा तो जरूर चक्कर लगाएंगे।
0: पर। हाँ बताए, फिलहाल
1: तो
0: कौन सा गाना
1: सर
0: सुन
1: जी,
0: पाएंगे?
1: आज मुझे सुना दीजिए सर जी, फिल्म अपमान की आका, दिया दिया दिल दिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में। कुल के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके सर जी।

0: ये मैंने
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली
3: हेलो
4: हेलो
3: नाम बताएं
4: अभिषेक टिप्पर
3: अभिषेक टिप्पर जी कहाँ से बात कर रहे हैं
4: सवाई माधोपुर
3: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
4: चिल
3: सुना रहे हैं सर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
3: पार्थ गुनावत।
4: पार्थ गुनावत जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
4: गंगापुर सिटी से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से आप?
5: सबसे प्यारा कौन पापा।
4: हेलो,
5: बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं होता। सबसे प्यारा कौन पापा सुना दो।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
2: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी मोहम्मद साहबान
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? शादाब जी,
1: जी यूपी ईस्ट फरुखाबाद जदीद से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: खुदा करे कयामत हो और क्यों आए
0: सुखा दे सर आपकी समय से।

हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करें।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
2: नाम मोहम्मद शादाब खान।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद।
3: बताएं शादाब जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सर गाना सुनना चाहते हैं कयामत कयामत हूँ मैं।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे, तो रेडियो डीएस में खुल के बनूंगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर।
2: नमस्ते सर।
0: सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: सर ठंडीराम, उधर बोल रहा हूँ, गांव बदरका से।
0: ठंडीराम जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: झाड़ा के बोल रहे, तू शायर है मैं तेरी शायरी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: हाँ भैया, योगेश डांगड़े भी मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मोहरा से सुनवा देंगे।
1: ओके सर, सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का।
0: धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम बताए।
2: प्रीति मित्तल, रंगापुर सिटी से।
3: मित्तल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
3: गंगापुर सिटी से। बताए मित्तल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: सर, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी।
3: दोबारा बताए।
2: खैर मंगा सोनिया मैं तेरी।
3: बिल्कुल गुप्ता जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना रेडियो। धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इमान डोल जाएगा।
0: इमान डोल जाएगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो ऋषिकेश, नमस्कार
2: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: मेरा नाम कैलाश है, मैं बानवा स्टेशन से बोल रहा हूँ।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: तो ना देखो तो घबराता है, देख तो मेरे दिल को मेरी पेन आता है।
2: क्या सर एक बार और बताएं?
3: तुझको ना देखो तो दिल घबराता है।
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश।

0: मैं जान दे दिया।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम ओम प्रकाश।
2: ओम प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं छोटी देरी से बात कर रहा हूँ सर।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: आया सामान झूम के वाली वो फिल्म है ना उसका।
2: जी, गाना बताएं।
1: वो गाना याद नहीं, बस मुझे इतना याद है।
2: आया सावन जूम की फिल्म से कैसा भी गाना सुना देता हूँ सर आपको।
1: वो इच्छा सुना ओके। इसी को सुना दो, इसी टाइटल से।
2: और ठीक है सर, टाइटल सुन सुना रहा हूँ आपने।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:31 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेड रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेड रेडियो पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: लक्ष्य सैनी।
1: लक्ष्य जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: स्टेटस सॉन्ग।
1: हाँ जी,
0: स्टेटस सॉन्ग।
1: स्टेटस सॉन्ग
0: यस
1: सुना रहे हैं सर आपका। आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डीएस में बोल दिया। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: हम बताएं।
1: अंजलि।
0: अंजलि जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर से। ठीक है,
0: बताए मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पल पल।
0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डीएस में सुनते। धन्यवाद।

0: आपकी भाई जय भवानी।
1: जय भवानी दादा, नाम बताएं।
0: विमल, ओनली विमल मामा, गंगापुर से। ठीक
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: कसमें बाजे प्यार वफा, बातें हैं बातों पर के।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। ये गाना रेडियो डेज में फुल किया, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
2: 89। हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
0: गंगापुर सिटी का
3: अभी थोड़ा भी
2: अभी टोड़ा भीम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: काका सिंगर
2: है जी।
3: काका सिंगर
2: का, ठीक है सर, सुना रहे हैं आपको। आपकी फरमाइश में गाना रेडियो डीएस में फुल किया, धन्यवाद।

0: नाम बताएं।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताएं आपका।
1: पिंकी।
0: पिंकी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हेलो।
1: पिस्तौल
0: सुना रहे हो? पिस्तौल सॉन्ग आप

0: सिर्फ अकेला। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: हेलो
8: हेलो
7: सर, नाम बताएं।
8: आयुष।
7: कहाँ से बात कर रहे हैं?
8: गंगापुर सिटी।
7: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
8: सांड रे आते गोली चला दी।
7: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश रहेगा।

0: जी
1: रतनलाल बोल रहा हूँ।
0: रतनलाल जी कैसे हैं आप?
1: हाँ तो आपका आशीर्वाद है, ठीक ठाक चल रहे हैं साहब।
0: सर आशीर्वाद तो आपका चाहिए हमको। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: आज तो वो सुना था चल उड़ जा रहे पंछी अब ये देश हुआ वे गाना।
0: अरे सर अभी पंछी को मत उड़ाओ, अभी तो चूगा चुगने दो पंछी को। सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: ठीक है सर, ठीक है।

0: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से
1: 89.6 DSFM पे। हर बीच में है शहर का कमाल।

दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों 12:15 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं लोग फरमाइश।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए, 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं। हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर। ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: दोस्तों 1:04 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं नहरे तराने कार्यक्रम का। दोस्तों कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं रोज नए नए गानों के साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान के रूप में रहेंगे मेघना धाकड़ जी। सुनते हैं इनकी ये वार्ता।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: नमस्कार, मैं मेघा धाकड़ फ्रॉम जयपुर। मैंने GNM नर्सिंग में डिप्लोमा किया है जयपुर के सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज से। मैं 2020 की पास आउट हूँ और 2021 में मेरा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ था और मैं आज उप स्वास्थ्य केंद्र पवालिया ब्लॉक सांगानेर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ 2022 से पोस्टेड हूँ। आज मुझे 4 साल हो गए हैं एक रूरल एरिया में अपनी सेवाएं देते हुए और इस 4 साल के जॉब पीरियड में मेरे पास बहुत पेशेंट आए हैं जिनमें से एक मोस्ट कॉमन डिजीज देखने को मिली, इवन कि 70% लोगों में ये डिजीज मुझे देखने को मिली है जो कि है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा बहुत सी महिलाएं आती है मेरे पास में जिनका एक ही कहना होता है कि मैडम मोटापा कम ही नहीं होता है, हम कैसे कम करें, आपके पास कोई दवाई है तो दवाई दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोटापे के चलते प्रॉब्लम डेली रूटीन के काम करने में भी बहुत परेशानी होती है। कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनके पैरालिसिस हो रखा है और वो बहुत हैवी वेट है। अब एक बेड रिटन पेशेंट है जिसके ऑलरेडी पैरालिसिस हो रखा है और वो हैवी वेट भी है तो उसकी केयर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट को एवरी सिंगल हावर में उसको करवट दिलाना, उसके पर्सनल बहुत सारी चीज़ें होती है डेली रूटीन की वो करना, तो बहुत परेशानी आती है उसमें। और आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये डिजीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो आज अपन इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। आज जानेंगे कि ओबेसिटी क्या होती है, किन कारणों से होती है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका क्या इलाज हो सकता है, इससे क्या बीमारियां बढ़ सकती है अगर अपन मोटे हैं तो। आपके आसपास कोई लोग मोटे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको कैसे रहना चाहिए। तो ये जो आज मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ ये मोस्ट कॉमन है, सबको लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब ऐसे ही है, बस आज हो गई कल ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ओबेसिटी एक अपने आप में बीमारी है और इस बीमारी के पीछे 10 और ऐसी बड़ी बीमारियां पैदा होती है जिसका इलाज ना अपन कर सकते हैं, फिर उनका क्या होता है कि लंबे टाइम तक बीमारी उन बीमारियों की दवाइयां चलती रहती है, अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो आज अपन उसी चीज़ पे टॉपिक पे बात करेंगे कि अपन कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपन उसका पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओबेसिटी होती क्या है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मोटापा बस जो मोटा दिख रहा है वही मोटा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब डेफिनेशन इसकी ये होती है कि बॉडी में एक्सेस लेवल में फैट जमा हो जाना, मतलब जिसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में फैट जमा हो जाती है उसे ओबेसिटी बोलते हैं। अब ओबेसिटी होती क्यों है, अब वो बात करते हैं कि ये इसके मुख्य कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या हैं इसके। तो आज मैं बता देती हूँ कि इनबैलेंस डाइट, जिसमें अपन जंक फूड मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, अपन कुछ भी बाहर का कभी भी किसी भी वक्त खाना खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, मीठी चीज़ें खूब खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें, अपने को भूख है एक रोटी की अपन खा रहे हैं 3 रोटी, और वो भी टाइम से नहीं खा रहे हैं। अपने को वैसे खाना 7 बजे से पहले खान लेना चाहिए, लेकिन अपन खाना कब खाते हैं? रात को 9 बजे, 10 बजे, सोते कितने बजे हैं? 11 बजे। और आजकल के दौर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो गया है कि सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया से लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती है, ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का कुछ पता रहता है, कब बच्चे सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कोई रूटीन ही नहीं है किसी का। मतलब लेट नाइट सोना, इसकी वजह से भी अपने कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं में मोटापे का क्या कारण होता है। ऐसा नहीं है सब में सेम कॉजेज होते हैं, सब में अलग अलग कारण होते हैं कि किस में किसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, किस में किसकी वजह से वजन बढ़ रहा है। तो मैं बात करती हूँ महिलाओं में मोटापा किस कारण से होता है। महिलाओं में मोस्टली 3 कारण से होता है, एक तो मेनोपॉज की वजह से, एक PCOS की वजह से और एक थायराइड की वजह से। अब अपन बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज में मोस्टली उम्र बढ़ने के साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और पेट की चर्बी बढ़ती है। और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण इंसुलिन स्तर काफ़ी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और थायराइड में शरीर की कैलोरी की क्षमता कम हो जाती है, उसको जलाने की क्षमता कम हो जाती है अपनी बॉडी में। कैलोरी जो अपन ले रहे हैं, जो कंजप्शन कर रहे हैं अपन कैलोरी का, उस कैलोरी को जलाने की जो क्षमता होती है बॉडी में, वो थायराइड की वजह से कम हो जाती है, उसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है। अब अपन बात करेंगे कि ये हेल्थ पे कैसे नुकसान पहुंचाता है मोटापा, मतलब मोटापे से क्या क्या होता है। तो एक तो होता है हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे हार्ट की बीमारियां शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन रेजिडेंस बढ़ता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर बढ़ेगा मतलब डायबिटीज़ हो जाएगा। और थर्ड है हाई ब्लड प्रेशर मतलब जो खून की नसों पर दबाव बढ़ने से अपना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और फोर्थ है जोड़ों का दर्द, घुटनों और कमर पर ज़्यादा वजन पड़ने से जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। जिसका हैवी वेट है, जो ऑलरेडी बहुत हैवी वेट है, तो उसका जो वजन है उसके कमर और घुटनों पे ज़्यादा पड़ेगा, तो इतना तो सहन नहीं कर पाएंगे ना, इतने नाजुक से घुटने और इतने नाजुक से कमर, इतना वजन आप 70 किलो 80 किलो वजन लेके घूम रहे हो, तो इतना नहीं होता है। इसकी वजह से भी होता है। एक होता है फैटी लीवर, लीवर की कुछ सेल्स में एक्सेस चर्बी जमा हो जाती है, मतलब एक्सेस फैट जमा हो जाती है उसकी वजह से। और एक होता है स्लीप एपनिया में होता है क्या, सोते समय सांस बार बार रुकने की समस्या होती है, जिससे सांस लेने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लोग बोलते हैं ना रात को ये तो बहुत खर्राटे लेते हैं, मुंह खोल के सोता है या सोती है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि मोस्टली आप ये चीज़ नोटिस करना, जिसका वजन ज़्यादा है उसको रात को सांस लेने में परेशानी आएगी, या तो मुंह खोल के सोएगा या फिर वो खर्राटे लेगा, लंबे लंबे खर्राटे लेता है वो। अब अपन बात करेंगे कि इस मोटापे को अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अपन ना बाहर की चीज़ें अवॉइड कर पा रहे हैं, अपन लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, ना इधर उधर घूम रहे हैं, ना खाना। और जो ये चीज़ें मोस्टली उन लोगों में देखने को मिल रही है जो आजकल जॉब कर रहे हैं, जो सिटिंग जॉब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मतलब खाना खा के बैठ जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, घूमना फिरना कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि किस वजह से अपन, मतलब किन चीज़ों से अपन बचें उससे कि अपना वेट थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। एक तो मीठी चीज़ें नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा, कोई भी पैकेजिंग वाला जूस, चीनी वाली चाय, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, ये सब नहीं लेना चाहिए। मोस्ट मैदा और रिफाइनरी अनाज जो अपन आजकल कॉमन हो गई है, मैदा से जितनी चीज़ें अपने से बनती है अपन वो बनाते ही हैं, जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता, नूडल, समोसा, कचौरी, बिस्किट्स वगैरह, ये डेली रूटीन का हो गया अपना। और तला भुना फास्ट फूड जैसे कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह, बर्गर, चिप्स, पकौड़े, टिक्की, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है अपने को। बेकरी प्रोडक्ट भी बहुत सारे से, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री, कुकीज़, डोनट, अनहेल्दी पैकेट्स, जो पैकेट में जो पैकेजिंग में जो खाना आता है ना, वो हमेशा अनहेल्दी ही होता है। तो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे, तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा नमक ना ले, ज़्यादा तेल ना ले, और एक्सरसाइज करे, वर्कआउट पूरा सुबह भी वर्कआउट करे, शाम को करे, योगा करे, अपनी जो नींद है वो प्रॉपर लें, जो 8 घंटे की 6 घंटे की जो नींद लेते हैं उसको प्रॉपर लें। ऐसा नहीं 6 घंटे की नींद में से अपन 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, नहीं, नींद प्रॉपर लो। आप नींद की कमी की वजह से भी मोटापा बढ़ता है मोस्टली। बाकी थैंक यू, मुझे आज ये सब जो मोटापे पर ने डिस्कस किया, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSF।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
0: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। 89.6 रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम
0: है गंगापुर सिटी का

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
3: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
2: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
3: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है दो बच्चों के, इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: कि यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्री

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:04। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: और दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।

0: जी नमस्कार।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: साबिर बोल रहा हूँ, दशहर मैदान से।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना है तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के।
1: कौन सा सर?
0: तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: धन्यवाद जी,
1: वेलकम।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ जी राजेश।
0: हाँ सर, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: हाँ जी, मेरा नाम शकील है।
0: से बात कर रहे हो?
1: गांव जैतपुर खेड़ाबाड़ रामघाट।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे? किसकी
1: नहीं, सीमा मिश्रा की आवाज में कोई सब सुना दो।
0: में?
1: सीमा मिश्रा की आवाज में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पड़ेगा ना रेडियस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो बहन, नमस्कार जी।
0: सर, नमस्ते सर। नाम क्या है आपका? सर,
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रिम झिम बरसे बादलवा, मस्त हवाएं आई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडीडीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
4: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: ठंडीराम गुजर गाँव धाम।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फूलों सा चेहरा तेरा कलियां सी मुस्कान है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।

0: क्या आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आधा आधा
0: आधा आधा। ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करो।

0: कि यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: आरबी
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: के रब्बा जानदा।
3: ओके मैम, तुम्हारे यहाँ से फरमाइश कर रही हूँ।
4: नसरीन मोहन चाचा की भांजी है, बचपन से ही अंधी है बेचारी,

0: आया।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: प्रकाश।
1: कहाँ से बात करो?
0: ढोला प्रचिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अगले जन्म में अल्लाह ऐसा खेल रचा के खिला।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: आदरणीय पलक दीदी, सादर सा प्रेम प्यार है, नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: राजस्थानी सावन सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, सावन आयो सावन आयो रे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना
0: जी। आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।

0: मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: इश्क बाबला।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: इमान सुमीन है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरे जैसा यार कहाँ
1: सुना रहे हैं।

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है।

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकती।

दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं इस वक्त। आप रिसर्च ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों अब थोड़ी देर में लेकर चलते हैं आपको आपके मन पसंद एक कार्यक्रम भजन संध्या में। भजन संध्या में आज शुरुआत करते हैं तेजा जी महाराज के अलगोजा के साथ। तो जरूर आपको पसंद आएगा, सुनते हैं तेजा जी के अलगोजा भजन के साथ।

सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

वस्त्र या फिर आप कहीं भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रभु को मन में रखो और ये लाइन आपके लिए।

ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, आज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं, गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

जो नजर मेरी विच बेवफा हर गल उन्हां नाल जा जुड़दी नी मैं जोर ला लिया कमली नू मेरी कलम मोड़िया नहीं मुड़दी नी मैं दुनिया फैन बना लैनी तू भी ना दिल चों हेट करी मैं थों डेटा पुछ पुछ रखणगे मेरे अगले गाणियां दी वेट करी।

0: जनाब जनाब आपा जी की छोरी उठा के लेके आए नी। इन गुआ सिंह मोटो बदमाश है। अब तो आपा को नहीं बच्चा, वो आपा ने कौन छोटेगो।
1: मन ने तो बड़े बड़े सिस्टम हिला दिए। यो के चीज है आन दे।

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार में डाल।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: 89.6 रेडियो डीएस।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।